आज के इस शुभ अवसर पर अखिल विश्व साई मां के जगत जननी स्वरूप की आराधना कर रहा है। इस नवरात्रि का मूल भाव यही है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही नवरात्रि है। हे साई मां, तुम ही गौरी के रूप में समस्त जीवों का पालन करने वाली हो, दुर्गा के रूप में जगत की प्राण शक्ति भी तुम्ही हो। हे साई जननी, मां काली के रूप में तुम्ही संसार और समस्त हमारी असुर शक्तियों का संहार करने वाली हो। इसके पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत है राग योग में एक तराना, जो कि बद्ध है 3 ताल में।

ना यहां रूप ना श्रृंगार अमर रहेगा, ना धनी धन का ना भंडार अमर रहेगा। जो आया है वो जाएगा एक दिन, लेकिन साईं का साथ साईं का प्यार अमर रहेगा, साईं का प्यार अमर रहेगा। उसी साईं मां के कोमल चरणों में प्रेम पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ अगला गीत, जय जय जगजननी देवी।

वते गुरु कौरस पूर्णाय फलापूप प्रियाय च ताता माणिक्य हस्ताय मंगलम श्री हनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च पुष्ट्रारूढाय वीराय मंगलम श्री हनुमते दिव्यमंगल देहाय पीतांबरधराय च तप्त कांचन वर्णाय मंगलम श्री हनुमते।